गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

जिथे सारिया भगतों नू सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहिंदे ने जदों देवतियां ने समुंदर नू रिड़किया ते 14 रतन कढ़े। समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहिंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पाणी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर की बात करते हैं, कहते हैं हे मालिक

मैं अनजान हाँ, मैं तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांता फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके।

सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने ना, अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिना तिना सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा है, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना आपस विच प्यार नाल हसदे ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही

से फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता आपसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को,

सही मैंने अच बौरा कौन है, दीवाना कौन है? तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंदा

करने आया है उदो तो मेरे मन नु शांत हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे सारे ही चंगा चित वदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू तो मैनू एनिया बख्शिशा कीतियां हैं एनिया रहमतां कीतियां हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

जे ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा, ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। तेरो जन होए सो एकत डोले, तीन भवन पर छा जा, हाथ

सुनिए सिख सही, साहब जी कहंदे हन आ दुनिया दे लोको मेरी एक सच्ची सिख्या लै लो। आख्या महाराज केड़ी सिख्या ओ? साहब जी कहंदे हन जेड़े कर्म तुसी कर रहे हो, जे चंगे कर्म कर रहे हो ओ भी तुहाडे लिखे जा रहे, जे मंदे करोगे ओ भी लिखे जा।

झूठ मन लो, लेकिन गुरु नानक पातशाह दे इस कथन नू किवें झूठा करोगे। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगे सिया बैठा कड वही। उथे तेरी वही कड़ी जाएगी, तेरे लेखे जो तू लिखे हैं तू आप लिखे, किसे होर ने नहीं लिखे। इस वास्ते खुद मनुष्या जीवन है, नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै, नहीं तो साहब गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं।

0: एडे कीमती श्वास पाए जिन्हां नाल तैं जपना सी श्री वाहिगुरु। उस मालक नूं ही विसार बैठा, इत्थे दी तां सोझी रही, इत्थे तां चंगा घर बना ले, लेकिन अगां जिस घर विच जाके रहना सी उहदा चेता ही कोई नहीं। सात संगत बोलो श्री जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नहीं। ओ अगे दी चिंता तेनू विसर गई। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नू तारदे होए एक नगर दे बार आके बैठे, की वेख्या एक बिरद बाबा जो अपने बच्चियां नू बड़ी ताड़ना कर रहे, ए कम करो ओ कम करो, जे कम नहीं करोगे तां भुखे मर जाओगे। ते इस बिरद बाबे ते धन गुरु नानक पातशाह दी नजर पै गई। ते आख्या जा मर्दानिया ओ बाबे नू बिरद नू इत्थे साडे कोल लै के आ। मर्दाना गया आख्या बाबा तेनू परमेश्वर दे रूप धन गुरु नानक पातशाह जो इस वक्त जगत नू तार रहे हैं आज इस नगर दे बाहर आए हैं और उना दी नजर तेरे उत्ते पै गई है। उना ने तेनू अपने पास बुलाया। ते जदों ओ बिरद गया ते पातशाह धन गुरु नानक देव कहन लगे आ बिरद बाबा हुण तां घर दे जंजाल छड दे, क्योंकि बहु बीती थोड़ी रही, बहुत बीत गई है, हुण तां थोड़ी रह गई है, पता नहीं किस वेले मौत दी शल आवे ते आ इस बूटे नूं रोड़ के लै जा। सात संगत बोलो श्री हुण परमेश्वर दा नाम जप लै, वेला है। जे नाम जप लवे तां असी तेनू मुक्त कर देंगे। ओ बिरद बाबा कहन लगा पातशाह अपनी मुक्ति तुसी अपने कोल रखो, मैं मुक्त होना ही नहीं चाहुंदा, क्योंकि जे मैं ना होवां तां घर दे आ कम कार कौन करेगा, धंधे कौन चलाएगा, आ मेरे पुत्रां नूं तां कोई सोझी नहीं। साहब जी कहन लगे अच्छा भाई तेरी मर्जी, असी तां हुण बचन कर दिता है तेनू मुक्त करन दा, लेकिन हुण जदों तू कवेंगा ना मुक्त कर तां करांगे। सात संगत बोलो श्री साहब जी चले गए। कुछ समा पा के मुड़ उस नगर विच्चों लंघे उस बिरद बाबे दे परिवार ने गुरु नानक पातशाह नूं पछाण लिया। बिरद बाबे दे लड़के धन गुरु नानक पातशाह नूं अपने घर लियाए, आख्या महाराज तुसी ओही हो जो साडे आ बजुर्ग पिता नूं उपदेश दिता सी कि नाम जप लै मैं तेनू मुक्त कर दियांगा। पातशाह कहन लगे हां किथे है ओ, अंतर जामी सब कुछ जान दे। आख्या किथे है ओ, तां परिवार दिया ने आख्या जी ओ तां कुछ साल हो गए हैं, ओ तां गुजर गए हैं। साहब जी कहन लगे अच्छा अंतर ध्यान हो के जहां तकिया तां गुरु नानक पातशाह ने कि ओ बिरद बाबा इन्हां दे ही घर बलद दी जून पा के बैल दी जून पा के खड़ोता है। सात संगत बोलो श्री साहब जी ने मर्दाने नु आख्या जा ओ सामने बैल खड़ोते ना उदे कान विच पिछले जन्म दी सोझी पा, आख तेनू गुरु नानक पातशाह आए हन मुक्त करन वास्ते, जे तू आखे तां कर देईए। उन्हें सिर हिलाया जिवें कहिंदा होवे कि मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि 500 दा तां जे मैं मर गया 500 दा तां ए नुकसान होवेगा परिवार नूं, ते 500 दा नवां बैल लियाना पवेगा, मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा। पातशाह से कहन लगे चल मर्दानिया अजे इसने होर मोह दियां चपेड़ां खानियां। कुछ समा बाद गुरु नानक पातशाह मुड़ उत्थों दी लंगे तां की वेख्या, आ बिरद बाबे दी आत्मा कुत्ते दी जूनी विच घर दे बाहर खड़ोती हुई है, कुत्ता बनिया है। साहब जी कहन लगे, आ मर्दानिया आ जेड़ा आ कूकर बैठा है ना कुत्ता, आ पता ही कौन है, आ पिछले जन्म विच ओही बिरद बाबा है। पातशाह इस हालत विच आख्या, हां हुण भी जाके पुछ लै जे मुक्त कर दईए इस नूं। मर्दाने ने पिछले जन्म दी सोजी दे के उसदे कन विच याद कराया, ते ओ इवें भोकिया जिवें कहिंदा होवे, ना महाराज मैं अजे भी मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि मेरे जिहड़े लड़के हन ना ओ ऐसे अणभोल हन, जो सौंदे हन उन्हां दी नींद ही नहीं खुलदी, ते मैं इस वास्ते बाहर खड़ोता हाँ पैरे ते के कोई घर दा धन ना लुट के लै जावे। साध संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु।
0: साहब जी हसे आख्या, चल मर्दानिया अजे होर जूनिया पाल। कुछ समय बाद जदों एक मरन लगा, ख्याल उस थां ते गया जिथे घर विच तन दबिया सी, ते सप दी जूनी पा के उस तन ते जा बैठा। एक दिन घर कोई नहीं सी, आ जितने आदमी सन खेतां विच गए सन, माइयां बीबियां कपाह चुनन गईयां सन, एक गोदी दे बच्चे नूं पंगूड़े विच पा गई, ते जदों ओ पिछों बच्चा रोया, ए मोह दा मारिया होया कि मैं जाके बच्चे दा मन परचावां, खुड विचों निकलिया, रस्सी दे राहीं उतरदा होया पलंग ते पंगूड़े विच आ रहा, ए नहीं समझिया कि मैं सप दी जून विच हां। ताईं किसे ने वेख लिया, लठा नाल मार मार के थां ते खत्म कर दिता। गुरु नानक पातशाह चौजी प्रीतम संसार नूं तारदे होए कुछ वरियां बाद मुड़ उस नगर विचों दी लंघे, तां की वेख्या, ए बिरद बाबे दी आत्मा एक कीड़े दा रूप धार के गंदी नाली विच पई होई है। साध संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु।
0: साहब जी ने आख्या, मर्दानिया आ जिहड़ा कीड़ा नाली विच पिया ना, इसनूं बाहर कट। ओ पातशाह इस कीड़े नाल तेरा की कम है? मर्दानिया कम है। मर्दाने ने टके दे नाल कीड़े नूं बाहर कढ़िया, साहब जी ने उत्ते जल पुआया, अपनी तली ते रख के पिछले जन्म दी ज्ञात दे के आख्या, क्यों बिरद बाबा तेनू हुण भी मुक्त कर दीए जां हुण भी जोनियां भोगणियां ने? साध संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु।
0: उस वेले शरीर कड़कड़ा के साहब जी ने ज्ञात जो सोजी जो दे दिती सी, ते फिर आवाज आई, पातशाह मैनू हुण मुक्त कर दे, मैं इस मोह दे किचड़ विच पै के बलद दी कुत्ते दी सप दी कीड़ा आदक जूनियां पाईयां, आ जिन्हां दे वास्ते मैं एडे पाप कीते, जिन्हां दे खातर मैं लोकां नूं धोखे दे दे के धन इकट्ठा कीता, ओ परिवार दा कोई भी संबंधी मेरे नाल ना निभिया, इस वास्ते पातशाह जी हुण कृपा करो, बहुते फिर वहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करके बख्श लो। साहब जी भी क्यों देखन ना पानी विच, बहुते फिर वहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करो पातशाह जीओ हुण मुक्ति दिओ। तां साहब जी ने जल दे छट्टे दे के आप निरंकार दा रूप संतान गुरु नानक पातशाह पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, किस किस नूं नहीं तारे, आ कीड़े उपर भी जल दे छट्टे मार के आख्या, जप श्री वाहेगुरु, तुसी भी जपो सारे श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु दे छट्टे मार के जदों उस कीड़े नूं साहब जी दी नजर पई, तां ओ कीड़े दी जून छड के बिरद बाबा दिव मूरत धार के गुरु नानक पातशाह दे अगे आ खड़ोता। सारे ही परिवार दे संबंधी लोक पिंड दे वासी इकट्ठे हो के आ चोज वेख रहे हैं। आवाज आई बिरद बाबे दी, उस रूप विचों परिवार दियां नूं आख्या, आ जो महापुरख आए हन ए रब दे रूप हन, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ 24,000 ਸਵਾਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੋਈ 6 ਮਾਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦਾ ਜਾਮਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਉਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ।

0: fiu hazete, ma राजू बाबा ऐ पड़े सन मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माता नुंदी है
1: हाँ, सुन हरनाक्ष नाम दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता ते प्रहलाद दे दिल विच आवाज आई पाले तपते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर उदा वाल भी विंगा ना होया उस विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां भगवान दा जाप करांगी
2: मेरी मेहनत मेरी और आप पुठे पाट पड़े जा रहे अज तो भारतीय करी ऐसी गल की थी तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हैरना किस्म भी पहुंच जाएंगे

प्रभ कृपा तारी नाम धन गुण गाओ हुण तां मैं गाउंदा चला जावां ते सब तो वड्डी खटदी खट्टी खटदा चला जावां लाभ पूरे गुर दिता वणजारे संत नानका प्रभ शाह अमिता प्रभु शाह दे द्वारे दे ए संत जन जो असल व्यापार करन वाले ने इस उद्दम दे सदका ए बहुत ही खट्टी खट जांदे धन गुरु नानक जिस वेले रोहेल खंड गए ने साहब विक गए गुलाम होके विक गए ते जिस बंदे ने खरीदिया सी ना उन्हें आके समझा दिता कहन लगा गुलाम आ कारी ते इस घर विच घर दे सारे काम जो बेगम आखियो तू करने धन गुरु नानक सिर नवा के कहता जी हजूर माल डंगर दा वेड़े पाले दा आले दुआले दा सारा काम तू सामना मेरी मुठी चापी ते सेवा भी तू करनी साहबा ने जी हजूर कह दिता सवेरे तड़के पानी गर्म करके मैनू नहाउणा ही जी हजूर वो बड़ा खुश है कैसा गुलाम मिले कैसा असील है कैसा आज्ञाकार है रात बीती अमृत वेला होया उन्हें आवाज मारी गुलाम पानी लेके आ नहावांगा धन गुरु नानक कह लगे हजूर जा ही रहे मालिक चले आई सा ते धन गुरु नानक थोड़ी देर बाद वापस भी आ रहे गुलाम पानी ले आए हैं ते धन गुरु नानक कहंदे ने हजूर माफी का खास्तकार हाँ माफी चाहना पानी है नहीं किधरे बड़ा गुस्सा चढ़िया आखिर यह बंदे नूं क्रोध ही आवेगा कह लगा पानी है नहीं है कैसा बहाना है खूच पानी है नहीं धन गुरु नानक कहंदे ने नहीं तला तो लै आना सी हजूर उत्थे भी नहीं वो निकम्मिया उत्थों परा दरिया तो लै आना सी धन गुरु नानक कहंदे ने हजूर उत्थे भी तो नहीं नेड़े तेड़े पानी किधरे भी तो नहीं मैं कित्थों लै आउंदा इन्हे चिर गली च हाहाकार मची दी आवाज पई घबरा के उठे पुछिया की गल है कहंदे ने सारे नगर च पानी किधरे नहीं पानी दी तो पानी बिना किवें जीवांगे घबराहट पैदा होगी सियाने बंदे सिर जोड़ के बैठे जो बुजुर्ग सन जिम्मेवार सन उन्हें क्या गल की बन गई पानी किधर गया कोई उन्हां विच सी थोड़ा जिहा रब दे भय वाला वो कहन लगा मैनू जापदा है किसे साई लोक दी किसे रब दे बंदे दी खुनामी साथों हो गई है ता यह सजा साडे सामने आई है पानी दी बूंद बूंद नूं असीं तरस के मर जावांगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेड़े तेड़े किधरे पानी नहीं किसी की खुनामी बेदबी साढ़े को हो गई जापदी तो एक बिचों जरा बड़ा चंचल सी कहन लगा खुनामी की गल तो करो जी आप को नेकी की गल कदे की हो आप मार कुट के लोगों उन्होंने को वगारा लें कम लें पता नहीं इन्हों कौन कौन की है कह लगे नहीं जरा गौर वाल विचारो वह पठान जी ने खरीद के गुरु नानक नूं लिआंदा सी दो घोड़िया तो कहन लगा एक बंदा मैं राती लिआंदा है खरीद के बंदा बड़ा ही धीरज वाल है बड़ा ही सील है बड़ा ही आग्ञाकार है ते जे उहदे चेहरे वल वेखिया नहीं जाता उहदे नेत्रां वल वेखिया नहीं जाता जापदा है किते गलती नाल मैं किसे रब लोक नूं तां नहीं गुलाम समझ के खरीद ले आया वह कहन लगे विखा सानूं चल आ गए उन्हां च जिहड़ा बंदा आगू सी बजुर्ग सी कहन लगा बाबा पानी नहीं धन गुरु नानक नूं कहन लगा साईं लोका पानी नहीं पानी तो बिना किवें चलेगा धन गुरु नानक कहन लगी अगे भी बंदियां दा लहू पींदे जी हुण वी पीती चल जे इसे नाल तुहाडा कम सरदा है हुण इहो जी गल कदे किसे गुलाम ने कहणी सी धन गुरु नानक ने झटका दे के जगा दिता उन्हां वेख्या वाकई गुलामां वाली कोई गल नहीं ये तां पैंदा है उत्तों दी कहन लगे बाबा मर जावांगे धन गुरु नानक कहन लगे जीण जू नहीं देंदे मरो किसे नूं जीण वी तां नहीं देंदे किन्निया भैणां ने वीर तुसी कोहलुआं नाल जो छड्डे किन्निया मावां दे लाड़ले पुत्तर तुसां हलां अगे ला छड्डे किन्निया सुहागणां दे सुहाग तुसां मार मार के कोड़े खत्म कर दित्ते ने चक्कियां ते खरासां ते जो जो के तुसां उन्हां दी रत पी लई अज तुहानूं अपने जीवन दा मोह जागे है ख्याल जागे है लोकां नाल की करदे सिर नीवें करके बह गए गल नहीं औड़दी लोड़वंद भी होवे ना बंदा ते फिर उहदा रुख बदल जांदा कहन लगा बाबा कुछ कर सकना है पानी दा धन गुरु नानक कहन लगे इक्को तरीका इहना सारिआं नूं छड्ड दिओ पानी आ जाएगा तुहाडे वास्ते निरंकार दी प्रसन्नता प्राप्त करो इन्हां दी रूह राजी करो इन्हां सारिआं नूं आजाद कर दिओ कई भैणां दे कलेजे ठंडे होणगे कई सुहागणां दे चित राजी होणगे कई मावां दे कलेजे नूं ठंड पै गई होंदी असीस सदका तुहानूं सारे सुख आउणगे इक पानी दी गल की हुण उन्हां ने अपना मसला रखिआ कहन लगे बाबा जे इन्हां सारिआं नूं छड्डता असीं की करांगे क्यों कि बाबा साडे काम किवें चलणगे धन गुरु नानक कहन लगे आप करो कहन लगे आप कदे कीते नहीं बैठिया बिठाया हो जाते हैं इस करके धन गुरु नानक।